सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उन्हां दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

कितने जन्म मनुख भक्ति करे, जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर, उन्हां दे चरणां ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

छह साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे शीश बंदे कर बैसन दीजे बिन सिर से।

की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और ये धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न तहावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

कोई एक काज सवार सकता है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ये यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

हर पुरुष प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहते ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इस तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी अपने मन में लैके

अपने सहे दे नाल अपने प्रभु दे नाल रते गए बाब जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिआं नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सब

खुलियो रुखड़ा अमृत जांका नाव जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही ते उहदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे हुए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु का नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन सवार लें।

हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है, क्योंकि परमेश्वर सारे दे नाल वसदा है, ओ दी निगाह तो कोई दूर नहीं हो सकता है।

मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके, गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

सवेर बीती दोपहर हो गई, मेहता कालू जी वेड़े विच बैठे, अखां बाहर दरवाजे वाले ने। इन्ने नू मेहता कालू जी आवाज मार दे ने, गुरु नानक साहब जी दे माता अपनी धर्म सुपत्नी तृप्ता, आओ देख मेरी लाडली थी, मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी ने पहला पहचाने आसी, नानकी ने ही सानू के आसी कि ये अर्शां तू आया है, इसने पुत्र ना समझो, ये आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है, ते मैनू जापद है जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जय राम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे, अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिआ कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए, मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे।

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनु गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुन ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जयराम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। पाईया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसीं आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताँ कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वह किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना एक कथा कहानियां सुननियां हैं अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखने हैं वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया ते आओ एक कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखी साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तां मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार तां इस तरह कोई नहीं होंदा। जिन्हां ने प्यार कीता है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्हां ने प्यार कीता, ते प्यार कीता ते फिर भरपूर कीता। प्यार च अधूरेपन दी की गल, ते जद भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है। तुसां वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने, ते पति दी प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी करदियां, पति दी प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तों बौरियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच वी प्यार है। शरीर करके भी पति दी प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने, ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आने की थान नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लेके बैठा होगा बल तो होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते रह गया है, मन किते दुकान ते रह गया है, मन किते भटकदा रह गया, शरीर करके इत्थे बैठा रह गया है, अधूरी हाजरी लगेगी। और वो बड़ी खास कथा है जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह दे द्वारपाल दो गुरसिखां विचों इक चला गया सी रात नूं, रासधारियां दी रास वेखण चला गया सी। सवेरे आया ते महाराज ने पुछ लिया क्यों भाई रात हाजिर रहे सो, बड़ा परेशान होया। महाराज ने पुछिया क्यों भाई रात पहरे ते हाजिर रहे सो, बोल पिया, कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सी, किथे गया सी, कहिंदा जी रास वेखण चला गया सी। नाल दे पिंड रासधारी बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी, जब तो तुहाडे चरणां विच आया इस पासे कदे गए नहीं सन, चला गया सा, गलती हो गई। साहब कहन लगे चंगा कीता जी, गया है चंगा कीता है, तू दस की वेखिया ते की सुनिया। कहन लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता, एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की, एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कहन लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की, सिर नीवा करके खलोरिया, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पूछिया वेखिया की ते सुनिया की, कहिंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा किवें हो गया? कहन लगा महाराज गया तो बड़ा धाके सा, ते भीड़ नू चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उत्थे कुछ कहानी होर तरह हो गई, लोग रासधारियां नू छड़ के मेरे वल वेखन लग पए, और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पए, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा, वेस तो गुरु का सिख जापदा, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहणी बहणी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने, इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया ते नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा ते फिर सिख किवें होया? फिर तां कोई बरूपिया ही होना, जिवें असीं रासधारीए तरह तरह के रूप धारण करके ते लोकां दा जी परचावा पै करने आ, किते इह वी तां नहीं सिख दा रूप धारण करके अपना या लोकां दा जी परचावा करदा फिरदा होवे। कहिंदा महाराज उन्होंने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खलोना औखा हो गया, मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलण नहीं दिता उन्होंने, मैं उत्थे ही सिर गोडियां च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया, तुहाडे चरणां दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहिब कहन लगे तू फिर कहदा गैर हाजिर होया, तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजिर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजिर रहे, गड़बड़ा गया। कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रासधारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी, उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदियां रहियां ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे, मैं उह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहब कहन लगे इह बंदा हाजिर सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाजिर सी, बड़ा पछतावा लगा, इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहन लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता, जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गया है इहने वी मेरे नाल द्रोह कमाया।
मन करके हाजिर रहा है लेकिन शरीर मेरा स्वरूप तो उथे लै गया है। जेड़ा शरीर करके इथे रहा है मन करके उथे फिरदा रहा है। मैनू ये अधूरे प्रेमी दोवें ही परवान ने। मैनू ये अधूरी प्रीत अधूरी सेवा अधूरी हाजरी दोवां दी परवान नहीं। एक शरीर करके गैर हाजिर फिरदा है एक मन करके गैर हाजिर फिरदा है। मैनू तां दोवां तरह नाल हाजिर चाहिए। और कई ऐसा करते ने इथों तक मैनू खिमा करना। एक बार ऐसा भी होया किसी प्रेमी नूं क्या गुरमुखा केसां दी बेअदबी ना करिया कर। कहिंदा जी प्यार तां अंदरों चाहिए केसां नाल की हुंदा। कमाल है जे तेरे अंदर प्यार हुंदा ते जिस दे केस ने जे कलगीधर दे चरणां नाल तेरा प्यार है ते उहदी मोहर दा तूं एवें बेड़ा गर्क करदा एवें उहदी मोहर नूं कैंची धरदा नहीं हो सकदा सी। तैनूं गुरु नाल प्यार कोई नहीं होणा अंदर भी कोई नहीं होणा। अंदर दा बहाना ना कर। उहने इक बड़ी अजीब गल कही। कहन लगा जी आ जिन्ने फिरदे ने दाड़ियां वाले केसां वाले मैं एक गल पुछना। मैं दसो कि पंज ककार ने। मैं बिल्कुल ठीक ने। कहिंदा केस कंघा कड़ा कशहरा ते किरपाण। मैं बिल्कुल ठीक है। कहिंदा विखाओ मैनू किन्नियां ने बाकी दे चार रखे हुए। 20% मैं उन्हां नालों फालतू हाँ होर कोई खास गल नहीं। वह जिन्हां ने केस रखे हुए ने कंघे की बजाय वह अंगीठी ते पई कंघी वरते ने। कंघा कोई नहीं जे केसां विच रखदे। किरपाण कोई नहीं पाउंदे। कशहरे की बजाय कुटनिया जी पाई फिरते ने कच्चिया जिहा जिहड़ियां बच्चियां नूं पाई दियां ने ओह जिहियां वड्डे पाई फिरते ने। एक बड़ी गल होगी तो बहुतिया ने कड़ा पाया होगा बाकी तो किनियां रहता तो वह गैर हाजिर ने। मैं उन्हें एक बेनती की थी। मैं क्या गुरमुखा एक गल का ध्यान रखी जितना चिर केस नहीं रखता सिखी शुरू नहीं होती। एक रुख है ना उहदे पंज हिस्से ने जड़ मुड टाण पत्ते ते फुल। उही फुल जिहड़ा फल दा रूप धारण करता है उही फुल जिसने कल फल बन के इसे रुख दा मुड़ के बीज बन जाना। पंज हिस्से ने रुख दे। कहन लगा जी हां हुण तू यह दस एक बंदे ने फुल झाड़ दिते ने पत्ते ते टाणियां छांग दित्तियां तीजे ने मुड कट दिता है लेकिन तू देख रहा होना जड़ा विचों एक नवा रुख कल फिर फुट खलोवे। कहिंदा जी ये तां है। मैं कहिंदा जे रुख उत्ते खड़ा रहे उत्ते सारा रुख खड़ा रहे थल्यों जड़ा कट देवे फिर। कहिंदा जी फिर तां कोई नहीं बचन लगा। मैं कहिया सिखी दियां जड़ां केस जद सरूप ही नहीं तां सिखी शुरू नहीं होती। सिखी दे रुख दियां जड़ां केस ने। और एक गल का ध्यान रखना वारने जाइए साहब कलगीधर पातशाह तो किड्डे विज्ञानक सन जिन्हां ने बंदे दे अधूरेपन नूं डक्का लाया कि नहीं तू अधूरा ना हो कुदरत ने तैनू पूरा बनाया इस पूरेपन च अधूरापन पैदा ना कर। आप जी नूं पता होवे केस मनुख दा ओ अंग ने जिन्हां दे बारे कहण नूं तू कह देवे कि की फंक्शन है इस दी की करदे की ने केस। लेकिन अज वर्ल्ड हैल्थ इंस्टीट्यूट जिहड़ियां खोजां च लगी है उन्हां विच एक खोज है टैलीपैथी। ध्यान देना दिमाग दियां लहरां सोचां दियां लहरां जो मैं सोचदा वह दूजे दे दिमाग तक ट्रांसमिट हुंदियां ने बल्कि सारे वातावरण च निकलदियां ने। ट्यून होया या दूसरा मन उस नूं प्रवान करदा। दिमाग दियां लहरां नूं जिहड़े लोग प्रवान करना जाणदे ने एकाग्रता नाल उन्हां नूं टैलीपैथ कहिंदे। दिमागी तौर ते ही बिना कुछ बोलिया अपने दिमाग दियां लहरां नाल ही मरीजां दे दिमाग दे विच झटके दे के वह इलाज भी करदे। घालना वाले लोगों की गल है। पुराने समयां तो मनोविज्ञानक ये ढंग बच्चों नूं पढ़ाउण दे काम भी आउंदा रहा चेलियां नूं सिखाउण दे काम भी आउंदा रहा। लेकिन एक प्रश्न पैदा होया असी सुंघदे हां नक नाल असी सुणदे हां कन्नां नाल असी वेखदे हां अखां नाल चखदे हां जीभां नाल ते असी छो के जिल्द नाल अपने शरीर की स्किन नाल छो के ठंडे तत्ते का पता करने। लेकिन जिहड़ियां दिमाग दियां लहरां जिन्हों सिक्स्थ सेंस कहने आप छेवीं हिस कहने एदा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ते सोर्स ऑफ सेप्शन की हो सकता है। और तुसी हैरान होवो कि वह इस नतीजे ते पहुंचे ने कि टैलीपैथी का
ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਓ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕੋਈ ਢਾਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੌਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕੈਸੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ, ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜੇ ਯਾਰ ਮੇ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਬਚੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਹੈ,

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए। जदों सिख राज दा पहला सिक्का

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते यह सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का जिदे बोलां दा यह मतलब है सिक्का जद हर दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा। इना दोनों लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है। गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा यह सिक्का चालू होया। सिक्के दे दूजे पासे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह लिखवाया जरब बा ईमान उल दहर मुसवरात शहर जीनत उल तख्त मुबारक बख्त। फारसी दे लफज जिसका मतलब जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलती है जिथे एक सुंदर नगर वसदा है अते जिसका शिंगार ए भागा वाला तख्त है उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहा इस राज विच सब बराबर ने इत्थे सारिया नू सत्कार मान इज्जत मिलदी है और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला

माधुदास बैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दक्षण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा
और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके है। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टान वास्ते पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया